0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10

0: आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को, भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: The Prime Minister highlighted that today Jind is emerging as a symbol of the good governance model of the BJP and the NDA. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress.
0: Aaj Jind BJP NDA ke sushasan model ki tasveer ban raha hai. Bite varshon mein pura Haryana hi विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन की बीजेपी सरकार के इसी मिशन को नई ऊर्जा से भर रहा है।
1: Speaking on the occasion, Union Railways Minister Ashwini Vaishnav termed the launch of India's first hydrogen-powered train as a historic achievement in the country's technological advancement. He noted that this milestone is the result of a strong national resolve to develop

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: விருப்பம் தெரிவிக்க வந்த

0: गति देते हुए अब यहां जालंधर से कई नई रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा।
1: टुडे द प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन बिटवीन जिंद एंड सोनीपत एट जिंद रेलवे स्टेशन इन हरियाणा। The Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated development projects worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects including Delhi, Amritsar, Katra Expressway, which will reduce travel time between Delhi and Katra to about 6 hours. Speaking on the occasion, Railways Minister Ashwani Vaishnav called the launch of the country's first hydrogen-powered train a historic achievement, saying it reflects India's resolve to develop indigenous hydrogen technology. The Prime Minister launched also several developments.